सौ पुरख निरंजन हार पुरख निरंजन अर्गम अगम्य अपारा सब ध्यामे तुझ जी हर सच्चे।

प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अबर ना त्याहू जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख मारे तारिया है चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे उबरे मरण काल का त्रास निभरे उज्जो सदा हमारे पछा श्रीअस्त।

दैत जक्षन उपजायो आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझेव हवारा नमशिकार्थ सिहि को हमारी सगल प्रजाजन आव सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रण को बल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत परे बरे की वीर विशानत चिट्ठी ते कुंचर अस्थूला सफर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्न घट घट के पट पट की जन जब दुकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं जेते बदन सृठ सब तार है

दुष्ट जिते उठबा तुत पाता सगल मलेश करो रण गाता। जे अस तुचा विशरणी परे तिन कह दुष्ट दुखित हवे मरे। पुरख जमन पग परे ते हारे तिन कह तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हाओ ताके ताप तनक मैं हर हाओ। रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा शब सके न कोई। एक बार जंत मैं संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठावर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिग सकल देह को हरता दुष्ट दुखिन को शाय करता। श्री अस्तु जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकल्ला।

दुख दर्द भाव निकटना तन्नर घेरा है वजो जाकी एक बार चौपाई को कह है चौपाई संबत सुतरा सहस पणिज अर्ध सहस मुन तेन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर सद्रव ग्रह सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम सत शुभम सत अबजो दोहरा दास जान कर दास पर कि जय कृपा अपार आप हाद राग मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैना ग्रह प्रथम नाऊ किशन विशन गबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिनसाओ लिवलागी मोरी पग इंसाओ।

अपना जान मुझे प्रत पर गया है, चुन चुन शत्रु हमारे मर गया है, देख देख जग में दो चल्ला है, राखा मैं और ना दला है। तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहिब में दास तिहारा,

तो हे अपना जान करो ब्रत पार तुम साहेब मैं किंकर थारा दा जान दे हाथ उबारो हमरे सबैरिया न संगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता विदनाना किशन जथा मच्छर तरो चारो चूको ये कबले हो सुधारो कब बाज दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा सो कह हाऊ जग माहे जो ते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिबिचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आए स प्रभु को पयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कह तो सुनाए कब बाज दोहरा ठाड पयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याए पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान काओ नितुड़ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विष्णु महेश कोटिंद्र ब्रह्मा गिते राम सस क्रूर जले दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरग बास रग बरखरा सगरीपुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावै दुख पाप थे निकट न आवै मिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई समद सतरै सहस पचावन हाड़बदी प्रथम सुखदामन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो सिलेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तार सदरबदीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते कौ माग तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सवै बहुभेद गह अमेक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे ते साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस

मल जन्म जन्म दे कटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। श्लोक महला तीजा। ए मन हर जी ध्याए तू

चल रहे हैं। तीसरे पातशाह महाराज धन धन साहेब श्री गुरु अमरदास साहेब जी अमृतमय उपदेश सानू बख्शिश कर रहे।

आए मिले मेरे भाई। हुण साध संगत जी इत्थे मान शब्द है ना, वो दो बार आया, सुन तो बाद एक ते मम्मा ते नन्ना दोनों अखर ने। एक मम्मे टिप्पी नन्ने सिहारी मन, एक मन लई शब्द आया, एक मनण लई शब्द आया। महाराज जी कहिंदे सुन मन, ऐ मना सुन, मन मन दे विच इसनू मनण करके बसाए, तू बसा किस चीज नू? गुरु दे उपदेश नू, गुरु दे नाम नू। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु।

इच्छा ही पैदा नहीं होती बंदे के अंदर, जिज्ञासा ही नहीं जागती, तड़फ ही नहीं जागती। हर पासे जिहड़ी जिज्ञासा है वह धन दी है, माया दी है, पदार्थां दी लगी हुई है।

आपके मिलने ने आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। परमात्मा आज तक जिन्हों भी मिले है भगत ने याद किया, बस

संध्या वेले दे समागम आप जी दी कृपा सदका सजाए गए सजे होए दीवाना विच कीर्तन आरती सिमरन हर जस गुरबाणी।

ठाकुर सखी मंगल गाया, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सब मीत बंदप हर उपजे दूत थाओ गवाया।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाह

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु रामदास राखह सरनाई सुकह टल गुर सेवी है एहन सु सहज सु पाए दर्शन परसें गुरु के

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवां गुरपुरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे फरमान तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 621 622 सोरठ राग विच जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब कृपा करन चरणा दा प्यार गुरसिखी जीवन एक मन इक चित बंदगी शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी समत बख्शन गुरबाणी वर्गा जीवन सुभा अपने वर्गा बख्शिश करन दी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रभु जी बस साधके रसना नानक जनका दासन दसना प्रभु को सिमर से तनवंते प्रभु को सिमर से पतवंते प्रभु को सिमर से जन परवान प्रभु को सिमर से प्रभु प्रदान प्रभु को सिमर से ब्रह्मता दे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा बनासी सिमरनते लागे जने आप दयाला नाने जन के मंगेरवाला प्रभु को सिमरा से परोपकारी प्रभु को सिमरा जन सत बलिहारी प्रभु को सिमरा से मुख सुहावे प्रभु को सिमरा जन सुख बिहावे प्रभु को सिमरा तने आत्म जीता प्रभु को सिमरा तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरा तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरा बसे हरनेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानी सुरण पूरे पाग प्रभु के सिमरण कार्य पूरे प्रभु के सिमरण का बहु ना चूरे प्रभु के सुन हर गुण बाने प्रभु के सुन चाय सुमाने प्रभु के सुन चले आसन प्रभु के सुन कमल बगासन प्रभु के सुन आनाहा चुनकार सुख प्रभु सुन कांतना पार सिमर से जन जन को प्रमया नान तेन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पय सिद जति दाते हर सिमरन नीचो कुंड दाते हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना

हरिकानाम जनको भोग जोग हरनाम जब कचनाय भोग जनरता हरनाम की सेवा नाने पूजे हर हर देवा हर हर जन के मार्ग दीना हर तन जन को आप्रभ दीना हर हर जन के ओर सतानी हर प्रताप जने वरना जानी और भोजन हर थराते सुन सुमाद नाम रसुमाते आठ पैर जन हर हर जपै हर का पग प्रगट नहीं छपै।

तब चयन कार स्वास्थ्य सुमृत ख्यान जोग अभ्यास कर्म तरम क्रिया सकल त्याग बान मदे फिरेया अनेक प्रकार के बहु जतनापन दान हमें बरतना से घटा हमें करा तेवरत नेम कर बो पाते नहीं तो राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपी एक बार नौ कण पृथ्वी फिर चर दिव्य माओ दास तपी सृथ्वी व्याय

नाम मने बने ते ब्रह्मटा न पेख्या सकल सृष्टि साधना सोग दो जन समेता नान पाप नीले पान को तेरो नाम था मैं को नाम तेरा था।

जय प्रसाद तारे ऊपर सुख बस सोट बरात मीट बनता संघ जय प्रसाद पीवे सी तला सुदाई पवन पाव कामुला।

करतूत पशु के मानस आलोक बचारा करे दिन रात बाहर पे कंतर मल माया छप सुनाए कर छुपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुहान।

कहाँ बुझा अर्थ बुझे डोर कहिया तो समझे पौरा कहा फिर गा बे गंग जतन करे तो फिर पंग क्या पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो वहां उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुम्हारी कृपा चरे संग साई सो आवे न चीत जो बैराई तासो प्रीत बलवा के कृपा तर बसे।

तुम्हार पिता हम बार्ग तेरे तुमरे कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा यंतु चेते उचा भगवंत। सकल समग्री तुमरे सुतर तारी तुम ते हो सुआ क्या।

ताले अज्ञानी मन रोस करे अपने प्रति तापी को वह बौरस का विश्वास न हो वह जिसके बस सा कह रखे प्रभु किया के मन मथे उसे तो गुण करे नाल नानक साहब सदा दयाल अनक पात मैं कहे सब हो जन निर्भि साया सुरंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे जो दिस सुचरण हार लपट रव तैन दंदार बटाओ सुज लावे ने तके हाथ न आवे के

मिथ्या राजो बंधन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या राथ वस्ती अशुभ मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता

मिथ्यासुरम पर निंदा सुनया मिथ्यास पर दर्प को मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना पूजन अन्न स्वाद मिथ्या।

अवरव से आप न करे आव जाव जन मह महाराज के अंतर्व सेन्द्रंकार किसी तरह संसार जो तुम पान तिर प्रदाता नानक कुंजन चरण पर करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पे मान है।

जय प्रसाद सत्य अमृत खाय तजा करु को राख मान माय जय प्रसाद सुगंध तन लाभ तिज को सिमर परम गत पाव है जय प्रसाद प्रसाद सुख मंदिर तिस त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमर तिस रसना

साग संग मिटाया अभिमान साग संग प्रगटा सो ज्ञान साग संग बुझे प्रभु निराशा संग सब होतन मेरा साग संग पाए नाम रतन साग संग एक ऊपर जतन साध के महमा भरण कौन पराने नाने साग शोभा ब्रह्मा समाने साग संग गोचर मिले साग संग सदा पर फुलाए साग संगा वह बस पंचाशा संग अमृत रस पंचाशा जो संग सब की रहना साग संग मनो

ब्रह्मज्ञानी सदानंद हो जैसे सुर सर्व को सुख ब्रह्मज्ञानी के दृष्टमान जैसे राजरंग को लागे तुल पवान ब्रह्मज्ञानी के धीर देख ज्यो बसुता को खोता को चंदन लेप ब्रह्मज्ञानी का है गुणाओ नान ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मत निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्मज्ञानी के मन हो प्रगास जैसे तरु पर आकाश ब्रह्मज्ञानी के मित्र सत्र समा

करे ब्रह्म ज्ञाने सगल केरे नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह ब्रह्म ज्ञानी के सब परमया ब्रह्म ज्ञान तज बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञाने सदा समदर्शे ब्रह्म ज्ञाने के दृष्ट अमृत वर्षे ब्रह्म ज्ञाने बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञाने के निर्मल जुगता

तंदा ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी का हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल पला, ब्रह्म ज्ञानी सुगल धारणा, ब्रह्म ज्ञानी जपा सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी क्या क्या रंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या विषय प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम परिवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजाग, ब्रह्म ज्ञानी हो बनते आगत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुसाय निवास, नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी का दसवड़पा की पही है, ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे।

कृपांतर अवतारे पाशुप्रद मुद पात्र कोतारे सर्वलोका उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जगत गतना पाया धर्म नान तस्म।

जो वर्ताय साय जगत नानक प्रकय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जित जित कर रखे तत्नाओं।

कोटाचार बिहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट पर परम है उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपित्र होते कई कोट आत्म तंतार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याम है नान करते कांत न पामे कई कोट पे अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगातम ने कोर कई कोट पर द्रव कोर कई कोट पर दुख न करें

कई कोड़ बताल के वासी कई कोड़ नर सुरुने वासी कई कोड़ जन में जी में मरे कई कोड़ बजो नहीं फिराए कई कोड़ बैठे दिखाए कई कोड़ का लेथक पाए कई कोड़ की अतन मंद कई कोड़ माया में चिंता जय जय बाणा तय तय राखे नान सब के प्रभु के हाथ से कई कोड़ पै बैरागी राम नाम संग तेन लेव लागी।

जिसके अंदर राज भ्रमासो नरपति वसु आंदो जाने में जो बनवंत सोत विस्ता का जंत आप उसको करवंत का वह जन्म रोजन परमा वन भूमिका दो करे कुमान सो मूर्खा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नान क्या मुता के सो पावे तनवंता हो कर कृपा वे तन समान कर

कनक जतन कर आत्म निंद्र वह हर दुर्गा को कैसे गवाए आपद को जो परा कहा बैठ से बलाय निकट न आवे सर्व किरे न कमन होय को नाने ताके निर्मल सोए जब लग जाने मुझे का

संत शरण जो जान पर सोजन उदरहार संत के निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपदी संत के दुख न अर्धा कटा संत के दुख न जापते नहीं छुटाए संत के दुख न सो सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख न मत होए मलिन संत के दुख न सो बाते हीन संत के दुख रखे न कोई संत के दुख न तान पर अष्ट होए संत कृपा कृपा संत कृपाल कृपा दे करे नान संग संत संग निंदक पीतर संग दुख अंत मुख पावे संतन के दुख काग ज्यो लवे संतन के दुख सर्व जन पाए संग दुख द्रे जन क्रमाए संतन के दुख तृष्णा में जले संग दुख सब को चले संग दुख ते सब जाए संग दुख निचन चाहे संत की कथा को नाहे नान संत पाविता पिगत पाहे संत के निंदक मात ताई संत का निंदक खंड कर न पाए संत का निंदक मात आरा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का

तुझका हुक्म बुझ चुको है, तुझका नाम रंग कंठ पर होए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नान विघ्न लागे कोई। उस मन में कंदरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर लियो। नानो पेट ठाकुर का रंग स्वास संग मन से सब संग, चरण चलो मारो गोविंद मिटे पाप जो प्यार बिंद कर। हर कम सरवन हर कथा हर दुर्गा नानको जुर्म चावड़ पागे, ते जन जग माय सदा सुधार के गुण गाय। राम नाम जो करे विचार से।

जैसा सत ऐसा दृष्टा है अपने कारण में आप समाया सो दसो दसो दस जय गुरु प्रसाद तथा बुद्ध जब देखो तब सब कुछ मोल नानक सो सो कम सोई असुथूल नय कच जन्मे नय कच मरे आपन जलता पी करे आपन जाम दृष्टा दृष्टा अग्रकारी तारी सब सृष्टा पे

सकल संसार उद्रेतन मन प्रभु के सेव दुख सबके सेवक सकल दान प्रभु के सेवक दुख विचारण आपे मेल ले कृपा और गुरु का सौदा पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसन कृपा करे बड़ पागे नाम जपा में विश्राम नानक तिन पुरखो तुम कर मान जोग कर सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा सोए करने हर पहचाने सोए प्रभु के गे जन मिट लगाना जय सत।

मन मेरे सदा हरदा पवना से प्रभ आपे आप आपन की आगचना है जो सोबरानी नोचे को तेरे किसी काम गचना नहीं जापे कर नाम रूप बन तो इनाय मोह प्रभ की जो सकल कट सो है धनवंता है क्या को कर भय जहाँ सब कुछ उसका दिया दर भय असुर देखो कहा है प्रभु केवल कला बिना कहता वे देखो है भय दतार से देना धन गावार जिस घर बसा टूटे रोग नानी सोजन सदा रोग जो जो मंदिर को थम है थम तुम गुर का सोज मने थम बने ज्यो बखान नाम चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत नित्य रह जो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन

लाइया पुरुष के कल क्या पाया दोसो प्रभु देव नारत्याग चितार जो कत करे सोई सुख मान पुला प्रया जान कौन बसाए तेरे संग लपट रहो रसलो पीपा तंग।

प्रश्नास्पदी। अविनाशी ब्रह्म में आगमन केतु प्रत्याग से प्रेरणा किसको सर्व नरंतर को सोए आप बिना पे धन गैर गंभीर गये सुजाना पर ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल भक्त स्वात्र के जरने पाओ नानक मन अंदर आओ मनसा पूर्ण सरना जो जो कर पाया सोई हो गर परम जाका नेत्र फोर तिसका मन चरना जाने हो रे आनंद रूप मंगल सज्जा का सर्वथो सुने करता के राज में राज योग में जोगी तमत विसर्गेश में भोगी त्याए त्याए भक्त सुख पाया नानक तुष पुर का किने अंत ना पाया जाके लीला कीमत ना है सकल देव हारे अवगाय पिता का जन्म का जाना पो सकल परो अपने सोच मत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवा से ते गुण में जाको परमाए जन्म रह प्रिया वेदाई उचनी जिसके स्थान जैसा जना वे तैसा नानक ध्यान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक रंग रंग नाना बिलकिनो विस्तार प्रभु न सिय कंकार नाना चल कर माए पूर्ण पूर्ण सब ठाए नाना बिलकर बंत बनाई अपने कीमत अपे पाए सब कर तिलके सब तिलके ठाउ जप जप जीवे नान करनाओ नाम का तारे सगले जंत नाम

सुन सरवन कर कृपा जो सपने नाम लाए नानक चौथे बार में सो जन गत पाए रूप सत जका सत दान पुरुष सत केवल प्रधान करतोत सत सत जाके बाणी सत पर समय सुमाणी सत कर्म जाके रचना सत मूल सत सत योत पात सत करने निर्मल निर्मल जिस सब दाय तिस सब पल्ले सत नाम प्रभु का सुधाय।

पैदा ने अपनी मत गात जिसके सिर तो करने हार वर्ण बुझ कर तो विचार करते कि मित्र जाने की है नाने जो तुझ पावे सो वर्तिया विस्मन विस्म पै विस्मा जिन बुझे तुझ पाया सुवाद

माए जो हुआ हुआ सो जाने प्रभु ने कहा हुक्म जाने के मैं कौन बखाने तुझका गुण कहे कि न जाने हुआ आठ पैर पर बसा जुरा कोला ने सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मैं तने अपना तिन जन दे

मनुस्वारस्पति संतजनामिन करो विचारो एक सिमरनाम यदार और पासमित बसार चरण कमर दमाय रोतारो करण कान सोप्रथम रात दिल कर गाहो नाम हर वाथ

हफ्ते आ बैठा है ताको बिघन लागे कोई जा करे दब से हर तो एकलता तीता डर ना हो सिमर सिमर सदा सुपाओ पवन से पूर्ण है आस भगत पाए आत्म प्रगास तिथ कर दैव सेवना सिखो नानक काटी जम भाषी तद विचार कह जन साजा जन मरे चौका चौका चावा

जो होता रहे तब कवन डर कवन कत डराए अपने दिलता करने हार नानक ठाकुर गम्या पार अविनाशी सुख आपन आसन ता जन मन को का विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की तराज को के सोए जब विगत गोचर प्रवे का तब चितर

आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे तले समाये से हो सुना ही बुरा और कहो किने का चुकरा

सुखमनिषागोविंदगुण नाम जसमन वस्य सो होत निदान सर्वेच्छा ताकि पूर्ण होए परधान पुरुष प्रगट सबलोय।

कोट अपराध सा संग मिटाए संग कृपा ते जम ते छुटाए ज कह मत करम प्रभ पाए साध सुन नानक ते आए जिस

अनाहत जुग जुग एक को वेश एक दो जी भाओ लख होहे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा अख यह एक नाम जगदीश एतराह पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं।

हैं, सर्वम पर हैं, सर्वं कर हैं, सर्वास हैं, सर्वनाश हैं, करुणाकर हैं, विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थप है, कृता कृता अमृता अमृता अमृता अमृत है, करुणा करते हैं, अमृता करुणा करते हैं, अकृता करते हैं, तरनी तिरते हैं, देश्वर है, परमेश्वर है, अकृता करते हैं, अमृता अमृत है, अजवा करते हैं, अमृता अमृत है, नरनायक है, कलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, निर्वनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अरगंजन है, रवितापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता करें हर्ता हरे परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जासे भुजंग प्रयात छंद।

सतगुरु प्रसाद तो प्रसाद स्वये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखित प्राण पति के श्री भगवान की भुवह पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रत्ती के माधे मतंग जरे जर संग अनुभतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग रंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप लिप न्याव शीसना जात बिचारे एते भय तो कहा भाई भूपतंत को नांगे पाए पधारे जीत ब्रह सब देव दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने गने जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दयाद मदान संजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जवान सवान के पिख है पवन आहार जति जार समय सुपचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सिबाह दुरंत दुबह सुसाह सना दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलाएंगे श्री बस श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलाएंगे वीर पार बड्डे बरियार अब चारे सार की धार बशैया तोर देश मिलिंद मवासन माते गंजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साजर भूत पविख भांज पाएंगे जीव जिते जाल में थल में पल ही पल में सब थाप थपाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय धुन पापन के बहु पुंज खपाएंगे साध सु प्रसन्न फराया जग सतर सब अवलोक छपाएंगे मानव इंद्र जिंद्र नरात जौन त्रलोक को राज कराएंगे कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म ऐश्वर विष्णु सची पत अंत फसेजम फास भरेंगे जे नर श्री पद के प्रस है पग ते नर फिर न देह तराएंगे कह पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो नहात फिर यो लिया सास समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज गहू सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले बाहन पूछ तेरे सिर काहू ले लिंग लटकायो काहू लखर बाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को भतान को बूझत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया उर जाओ सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कहू बिता भूतान को पूज सह पास कहू मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया

जतकीशा ताब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा अमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाथ मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबाए करतारा मोर शांत करता है करे है सब बैरन का वास संग्रह है पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाह

लिहो बारी, सर्व ठावर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम ब्रज जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल सगल दे को हरता, दुष्ट दुखिन को शाय करता। श्री अस्तु जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन बांचत बल पावे सोई, दुखना तसे व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो यह सुरसना भावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निकट।

क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साज नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुखमन आए वस्या, जिन इच्छा सब हो जाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संदो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सभा गए, घर सभा गए शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत

अमृत सदा अरह हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करे रसना कहया गशु ना जानी। चित जिन का हिर लिया माया बोलन बैरवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। मुरखा शब्दर तन है हीरे जित जड़ाओ, शब्दर तन जित मन लागा ए हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिन दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव सगत आप उपाय कहे करता आपे हुक्म बरताए। हुक्म बरताए आप वेखै गुरमुख सह बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सो लिबलाए। कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सीमृत शास्त्र पुन विचार दे, सीमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे। ततै सार ना जानी, ततै सार ना जानी गुरु बाजो ततै सार ना जानी। तेहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहण बिहानी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसनु अन दिन हर लिब लागै जागत रहन विहानी। माता के उधर मह प्रतपाल करे, सो गो मनो विसारी है, मनो गो विसारी है ए वरदाता। जे अगर मैं आहार पहुँचावे, उसनु कहो पोहे ना सकी, जिसनु आपनी लिब लावे, अपनी लिब आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक ए वरदाता, सो गो मनो विसारी है, जैसी अगर उधर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता है खेल रचाया। जात सपाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर बिसरा मोह उपजाय पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमल कह मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे बिटो रहे लोग मिल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिला ते सुनाओ सिर सौंपिया विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहा है।

सागर तो त्रिदा है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। संतोह राम नाम निस्तरी है, होर कोई साधन संसार तो पार उतारन वाला नहीं है। साधन बड़े ने दुनिया ते, भगती देवी ने, योग देवी ने, वेदांत देवी ने, होर किन्ने मत ने, उन्हां दे वखरे वखरे साधन ने परमात्मा नूं मिलण दे, पर लेकिन गुरु नानक दा मत सब तो निराला है। सब साधना तो उत्तम साधन सतगुरु ने सानू दित्ते ने, साड़ी चोली पाए ने, सब साधन सत्कार योग ने, भाव सब मार्ग जिहड़े वाहिगुरु तक पुजदे आ वो सब दे सब सत्कार योग ने। सब तो उत्तम साधन महाराज जी कहिंदे वाहिगुरु दे नाम दा जाप करना है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सब तो उत्तम साधन, कोई योग राही, कोई ज्ञान राही, कोई किसे तरह, कोई किसे तरह, वख वख तरीके नाल परमात्मा की प्राप्ति नूं पाउण दा, वख वख मतां मतांतरां तों पढ़े हुए विद्वान जिहड़े है ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਗਿਆਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ

आप जी के दर्शन तो बिना कुछ नहीं चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस करके महाराज जी ने इत्थे कहा संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। जिहड़ा रब दे प्यारियां दा दस्या मार्ग है ना वो धर्म की पौड़ी हुंदा, भाव वो पौड़ी हुंदा जिहड़ी पौड़ी रब दे घर नूं जांदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उदे ते एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया होए कीश अगे जाके महाराज वचन कर दिए। कहिंदे भाई उस मार्ग ते चढ़ के एक ईश परमात्मा दे नाल मिलीदा है। कोई बड़भागी ही है जिहड़ा इस अवस्था नूं हासिल करदा है ते जिहदे ते किरपा हो जांदी है। महाराज कहिंदे कोट जन्म के किन विखनासे हर चरणी चित लाए। पिछले पता नहीं किन्ने के जन्मां दे कीते हुए माड़े कर्म खत्म हो जांदे। महाराज जी कहिंदे आ भाई उहदा चित जिहड़ा है वह वाहिगुरु दे नाम दे नाल फिर जुड़ जांदा है। फिर उहनूं तोड़न वाला कोई नहीं जम्मिया ना वह तोड़िया टुटदा है। भावें कोई लखां वार आके कही जाए ये ता गुनाही सी ये ता पापी सी ये ता ये सी ये ता ये सी। दुनिया दे लोकां दा काम हुंदा गल्लां करनियां जिन्नियां मर्जी कर लैण, पर जदों बाबा बिधी चंद साहिब जी ते किरपा होई तां फिर सब पासे बिधी चंद हुंदी सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो महाराज साहब जी की कला है। कोई बड़े भागा वाला होवे उहदे हिरदे दे विच एक कला टिकदी है, बख्शिश टिकदी है। कोट जन्म के किल विखना से हर चरणी चित लाए। करोड़ा जन्मां दे पाप खत्म हो जांदे है चित महाराज साहब जी दे चरणा दे नाल जुड़ जांदा है। हर चरणी चित लाए हरी वाहेगुरु अपने चरणा नालों दा चित ला लेंदे है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। महाराज जी कहिंदे ना अपना लाया पिरम न लगी, जे लोचा सब कोई चरणा प्रेम पाउणा, हिरदे नाल प्रेम पाउणा, गुरु नाल प्रेम पाउणा अपने आप नहीं पैंदा। महाराज जी कहिंदे हर चरणी चित लाए, जिहदा चित्त वाहिगुरु आप अपने चरणा नाल लाउंदा किरपा करदा निहाल करदा ओहदा चित ही महाराज जी दे चरणा दे नाल जुड़ता है। भाई इस करके जिन्हां दा चित जुड़ गया उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी उस्तत करो वाहिगुरु दी अपने दी। जिन्हें इस कलयुग के भयानक समय अंदर अपनी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी और महाराज साहब सच्चे पातशाह कलगीधर की जिहड़ी कला शक्ति है उन्नू बख्शिश रूप दे विच प्राप्त किया है और महाराज साहब जी ने जिहदे अंदर अपनी शक्ति रखी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। दूसरा अर्थ कहिंदे भाई वह वाहिगुरु की उपमा करो जिन्हें सारिआं च अपनी शक्ति जोत रूप करके रखी हुई है। सारिआं च तां है पर पूरी कल राखी कलयुग दे विच पूरी शक्ति वो तो फिर महाराज अपने प्यारियां च रखते हैं ना। ब्रह्म ज्ञान की दात दे के असी जीव अलपग दे अलपग रहने, सानू बोध नहीं हुंदा अनुभव नहीं हुंदा साड़ी किसे
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, दिच्चे पूर्व देवना जिस दी बात से कर आवे, दिच्चे पूर्व देवना जिस दी बात से कर आवे, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, पूरन ताल खटाया अमृत सर्वे जोत जगावे, पूरन ताल खटाया अमृत सर्वे जोत जगावे, उल्टा खेल खसमदा उल्टी गंग समुंदर समावे, उल्टा खेल खसमदा उल्टी गंग समुंदर समावे, दिता लइए अपना अंदिता के साथ ना आवे, दिता लइए अपना अंदिता के साथ ना आवे, फिर आई घर अर्जने पर संसारी गुरु कहावे, फिर आई घर अर्जने पर संसारी गुरु कहावे, जान ना देसा सोडियों होर्स अजरना जरे आ जावे, जान ना देसा सोडियों होर्स अजरना जरे आ जावे, घर ही की वत करे रहावे, घर ही की वत करे रहावे, धन धन रामदास गुरु जिन सरिया तने सवारिया, धन धन रामदास गुरु जिन सरिया तने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिजन हारे तारिया, पूरी हुई करामात आप सिजन हारे तारिया, सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कार, सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कार, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया, जिन्हें तू सेविया पाओ कर सिद्ध पार उतारे, जिन्हें तू सेविया पाओ कर सिद्ध पार उतारे, लब लोभ काम क्रोध मो मार कड्डे तो सब परवारिया, लब लोभ काम क्रोध मार कड्डे तो सब पारिया, तनस तेरा थान है सच तेरा पैशकार, तनस तेरा थान है सच तेरा पैशकार, नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारे, गोड ठाता मन सुधारे, नानक तू लहना तू गुर अमर तू विचारे, गोड ठाता मन सुधारे, चारे जागे चौंज पंचायण आपे हो, चारे जागे चौंज पंचायण आपे हो, अपने आप साजन आपे ही थम खलो, अपने आप साजन आपे ही थम खलो, आपे पट्टी कल में आप लिखण हारा हुआ, आपे पट्टी कल में आप लिखण हारा हुआ, सब उम्मत आवन जावन आपे ही न मान रुआ, सब उम्मत आवन जावन आपे ही न मान रुआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खे बेच दो, तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खे बेच दो, उगवान ते आथ बनो चौ चक्की कीनी लो, उगवान ते आथ बनो चौ चक्की कीनी लो, जिन्हें गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मोआ, जिन्हें गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मोआ, दूनी चौनी करा मा सच्चे का सच्चा टोआ, दूनी चौनी करा मा सच्चे का सच्चा टोआ, चारे जागे चौंज पंचायण आपे, चारे जागे चौंज पंचायण आपे हुआ, चाचरी छंद गोविंदे मकंदे उदार अपारे हरियां करे नामे अकम, गोविंदे मकंदे उदारे अपार हरियां करे नामे अकम, ढाडी दर्प मंगना दर कदे न छोड़े, ढाडी दर्प मंगना दर कदे न छोड़े, मदत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, मदत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, पीत लगी हर नाम सों ए हस्ती कोड़े, प्रीत लगी हर नाम सुन ए हस्ती कोड़े, राज मिल खुशियां गणी ते मुख न मोड़े, राज मिल खुशियां गणी ते मुख न मोड़े, ढाडी दर प्रमंगण दर कदे न छोड़े, ढाडी दर प्रमंगना अंदर कदे न छोड़े, उठ गई सभा मलेश की कर कूड़ा प्रसार, डंका बजे फतेह का निरंका अवतार, नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण बुरे अवतार, जगमा ज्योत विराजी अब चल नगर मजार, श्री सचखंड के दरबार श्री सचखंड के दरबार, धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकर ऊच भगवान नानक की प्रा बेनती अपनी भगती ला, धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब, तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार,
तू ठाकुर ऊच भगवान नानक की भरा बेनती अपनी भगती ला धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह महाराज कोट कोट प्रणाम भुल चुक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल।

पात्र दुतिया माल कौशक आला पह सांग रागनी पांचौथा पह गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ये पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई।

हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर।